0: ऐसे दिवा तं यूनिट देखने नमला लेकि आयु पे वासी ये किस बासी जालन सोंचे दिन तं तानी विकर जोंजों तं बाता शिले कोर चांगा ले चुमे बी जेनिंग कोर डों युगो जे जिंचेम जोशी कंद रनी जे बनं कंबा तं कचु जागर कंकोर गसा जी जे साधन जोगो तं न्यो जी जे जिक्तु नंबी न्यानिं कोर दे ये गसिंग गेंको वा चेर नो बी शोडी गसा जुन्दे न युगो वी बिली जे शंदी हिवा तं दिसों साचन देगी मांचो ला ले युदान बापाजे गोगा जेची यें, नांचे निगा रें योचों शेबा मिंबा, योगोवा लायां यूं देबादां, योमा देवी शोबो चाबा शेजे यें शेसमा शे। देवीन जेजुंक लमीदे, दिन्चिन जोंगा योगो न्याने गांली तोबी चांगो शेने, कोटों योगोवा नम चोजान रें देबाजा मिंबा, बेजी तोदी जेगदां, रोचें दे शेतिन जी, गाचो वोगा मेपुं देमो जेला रोची, गाचो वोगा मेपुं देमो जेला रोची, देनिं देबो जो यें येबा शे।
1: 大家天气总个家了三七天见呢健康送中大半卷皮肌超你了右位做电半浅皮电视右肩忙些这个镜头提过唱的千把当的呢做电半浅天擦光皮肌来个这些病个手段装起当装上年纪节人生当家是有把的天气总人的当有过几几几场上班该去往摸 我做梦的七点人力有过节比大亚不做话当现在比起来是当年家人三七点这节做点半浅点健康七八当通力得了没事出发季节装饰得季节别动哭的接了心里没地位忙完天气的用呢天气了该不用了谢谢你心松把的现在那把做光的三八点呢家人这节做点半浅几个人

0: गोली चांज जर साकर चीजर लुटिन जु
1: ती यी लंग तो रस्ता दन बा काना ची जे लो तो जो
0: बे जे लो तो
1: बे जे लो चु रिन ची
2: सिंके ना बचो कुन काम जा ताता ने बेजो लोंग चेंग चे ले कॉन कांक्री लोंग चेंग चे बुजे लो तो शो चु तु
3: ཁྱི་མ་ལ་པུ་རང་ཅོ་ཅོ་མེ་ཅ་ཁ་ན་རེ་ག་ཅི་ཁྱིམ་ཅོ་སོ་ཡ་ཟོང་ནེ་པུ་མེ་ད་ལུ་དབ་དུམ་པེ་དབ་ཁི་ད་ཟ་ཁ་ཅི་བྱོ་ཁོ་ང་ཏུན་དོ་དུ་ཅ་ཤ་རི་ལོ་ཅ་ཁྱི་རང་གནེ་རེ་རེ་དེན་ཁོ་བེ་ཏོན་ར་ཟ་པ་ཇོ་ཁ་ཏོ་ཡིན་ད་ཡ་པ་མེན་ཅི་ཉ་བ་ཡ་ངོ་ངེན་ཅོ་སིང་གི་ཅེམ་ཇ་ཅི་ཏོན་ཐ་མེ་པོ་ཅི 心民生意外的下规则可行的因为得差多个关注的意义呢了有把的沙巴的一个东西对现那个多的人民应该来那个日子可以好呀
2: 我这里今天七中啊你那不是我在这里你们心里前论着的但是让你七中啊你是七中啊把它碰到下门推的观众啊的是把它越来越动啊对目前吧观众的把这对头的下规则的哦今天别的东北七中啊你别的这把七中啊把它碰到的可能给的是呢下给的哦这个别的观众啊的做就在越来越动就对目前吧这观众判的路给对手的第一对头的带不给的这整个做到
3: 是是今年一三岁七应该叫什么呢对土米长更新恰更恰就我看着点这连吧门推店的身比参谋的邱炫党叶炫若炫机没用我下跪雕像周边三个节修足能帮着托上你马赛的西北的下一级特当拍照给雷盖也不习惯今年中楼阁我叫眼泪今年中大应我叫宁白的你妈呢今年级孙口的爬给我叫经历这次干嘛这可切的下顿人邱龙眼了接定对责任就位每级党出来修把的下我切的个能新碰下你落的能量就大总你都还去想对下落的碰不长能力如今通党三克的你也那么想下的不如这比七年时期七句也拉最宽个等你那边的顶把个七年也三岁七应该叫什么你对同米上跟新总能对三级类型个等你人民恰把恰就多而你却看着就多顶这一难了顶这连把银子个等你顶的插多个插马的一趟去了确选多也选如选从妈妈用力也呢来个的插嘴巴这个类子宽个周坑的几下也难了雕像周壁三个里修足谈及了帮着托上你马萨西部就到而你下一节他做就到怕就给雷格从马擦嘴部这个雷子看个等你把他顶把个七年周楼给我家眼泪七年顶大爷我家宁把的你妈拿走你那开心个七年级孙口爬给我家经历就自己干嘛这个下总大干嘛这个下里跟我出行个等你下顿个人了秋龙从马也拉一定个对身就差里头而你面积多除了修就个下话的时候就雷子看个把他顶把个其他过来去演了普鲁这比七年时期七九月哈子看个
2: 等你他到我这里了你就往上去买了个看不起这种这里到去接了大安的你就往买去看不起这位有接了车间人不怕谁不知道七九年老板那么热但多对哥们觉得下轮三顺南口这样车群人七九年的八上顿时变把那边落街的车辆投资给帮忙他不得等把你就往的买去你的看不起这些军事跌了地你又接了车去把这些人把就在等你七八九年老板那么热多对哥们觉得下轮跟三顺南口这样车群人多对呢不得等把跟车群人这么把日子到这七九年的八上顿时变把那边落街的车辆投资给帮忙他等你这咋的哥们就当跟这位了等你知道
3: 对不得等把个先把这过来去演了把这的七八接那几这几你就业就业就个年许这年许业年许住年许几年许各级这个了银子看个但公里那个你个白大顿把个大心多的学才过想了得令个这个七就过了我真多的学呢
2: 今天他得令个这个七就学呢得令个不没打了到我顿比七八个接到这笔七就不得日子到我干嘛没比你就出去了出去多的就把这把碰到上岸的还起上度得令那么过呢你已经那么过的我就去做个但是就去做一把你了的时候才开了那你不要去对咋拉吧用出去了也你不要去急咋破吧用出没了太阳的不叫骆驼血菜

0: Bejong Longchi Nyenchen Lekong, Kamke Lhopchi Lechen.
1: Bejong Longchi Nyenchen Lekong, Kamke Lhopchi Lechen.
2: Jachi Yusenke Namba, Ngana Bejong Longchi Nyenchen Lekong, Kamke Longchen Je Sanda Chichi Lechen Ke Gengen Loza Nima Yin. Tini choma la chanda chahi dili xio. Tini lontu koma ga nola ta ngan zo za sanji pa ga tini ta lada ka kwarti ngi ki nangde de zoni. Ta lada ta nrewi ka toni san zanji kwarla tini ma dodi ji sanda shi pa tini jiri. Ani toni teso ta nreni ngan zo san yi ka chua ni ya kyo ya pari. Tini dilo ngay la tini chua tini ji kwarni ma sakin dodi ji zo ji tini jiri. Chua tambo de kangre se de ta go ngo to no po mo ro lo so to ga ten je ke a de ni yi ge de zo yin na a ani la de ge chi yin bi ni ba yo ka me se de ta ta le shi dang ge dang ga zo ni ba me ba de nga zo shun de ko ma no hi yo shi de yin de ta go ngo la so ba de zo la de ge chi yin bi ni ba me na la de ge chi li yen ba ge ten ka no ni ge du s ba de re de yin de ta go ndo hi yo re ga ngo ko la so ba de zo de la de ge chi za ma yin ba अने तें ये कहने जुगरे हैं सेदी ला मेंग दां मेंग चाचीस ला अने जुगरे हैं ता मेंग कोरोना जुबा पे ना गंसो कांगो को मोटा तेरे जमा तो जु तोटा पो मो जु मोटा वोशे भी को मोटा अने रोंगरा वाजु रोटा तेरे केचा कोटा लोका से इंजु लोटा वो ता तेसो ते जावी चानी अने मेंग जुबा तेरे चिचाड़ी ह Ta mingi chakis njuba la yang yobar is. Mingi chakis njuba. Pe na, nganzo, nanaro no tabalan tsuan pa nye, noe se lenda, nome hen tabaga no te, mingi ki ta chakis jarba. Tini chudur mabu se lenda. Tini kadora tabaga tanaro to te, chudur da kadora la soba mingi te soka, chakis jarba. Chakis jarba. Nde yobar e. Tini yin yang nganzo, anaro wo tabalan tsuan, wajils, wajils evdi kali, rawa. जो वजह चाहिए थी इसे दिला जो कली खामा सोंगा कली चाहिए थी ये भी तेरा वाह ठीक है सर वजह लिखी बात जो मिंग चाहिए जब आओ तो तेरे योर इन्हीं ये बात सोमा लाते थे ना जो न्यूबा ये ना मिंग चाहिए जो भी कितने बजे ना जो मामू जी ये थक रहे तेरे दिस लो कानोर कोला सो बात इसे दिला रोगरंग रोग मारे इस लड़के ठेके में ना दगा मदोस या तेरे तातेला यंग तो कौन दिखे हुए ये दो चौसे लेना ये नो चौसे लेना छः सौ चौसे लेना तान दिले मापू हुए तान देखो ते चाहे चानी चानरो चौके चौकी भी को वो क चिरो ते तो ज़रे उम्मी का सिला नांदों के चानी तान योंजो छाचंग अने ये बात कानोर को उंगो लासो बाते सोते रंग उंग मिंटा टिके तो नहीं जिंजू कहाँ ही ना जिंजू तेरा थंबरा सी नहीं करो जगी पारे तेरे तेरे जतांग चानी की क्या पाये ना लड़ के जाजो जो थोथा था चिकबा चीज़ों छाड़ दियो तेरे ये पाये जा तन दर्दा भी इंजी ना अने लड़ के चेच कौन सा �

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से जेजो लंका मास दे जिना नो येंदा ला यांस से चाव रियो होयो बजो जो जटा मुन्यो दो संग तंगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जेजो लंका बि पेडो रे
0: रे रे तंगा ह गिंग के के शाम बत की छि इन रो तिंग मोनी ला संग जो रे
1: और रे रे रे लंका क्यों तो तो हमें क्या या बस के छना जेपिन जो को यो को
2: 好有了把做亲不没有危机场面解决蓝阔了马子有呢也不有主播那么做公共前的接动为日记某部写某某部写对接电车运对接什么时候我不写就有困难接送给接用到日日里门南了接改为没接接到给用完不算出发写加油 亚香了新竹林金内，公共村的不接动员，研究定别了解些，偷出不接路。